ब्रह्मामुरारी स्थिपरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्त गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे।